0: देखि क्याम्पस स्तर का पाठ्य पुस्तक गाइड गेस्ट पेपर लगायत का पाठ्य सामग्री
1: लोक सेवा आयोग का किताब
0: ऐन नियम कार्यालय विद्यालय तथा संस्था का लगी आवश्यक स्टेशनरी सामान तथा खेलकूद सामग्री का लगी हामी समझना हो गुणस्तरीय शिक्षा का लगी हामी प्रतिबद्ध छौ।
2: सुपथ मूल्य सेवा का लागि एकमात्र कर्नर अल्फा स्टेशनरी स्टोर्स एन्ड जनरल अर्डर सप्लायर वीरेन्द्रनगर छ बुद्ध पथ सुर्खेत सम्पर्क फोन नम्बर 083-521-137।
3: काम को टेंशन छाती सम्म थकाउने स्ट्रेस को दुश्मन नवरत्न लगाउने प्राकृतिक गुणयुक्त यो शीतलता ल्याउने कुल कुल मालिसले मिठो निन्द्रा ल्याउने
4: नवरत्न कुल ऑयल को 2 मिनट को मालिसले राख्छ तपाईलाई कुल दिलाउँछ गर्मी टाउको दुखाई थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कुल ऑयल चिसो चिसो कुल कुल।

चन्द्रनगर 2 बाङेसिमल टेम्पो पार्क सुर्खेत। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98520907726। सम्पर्क फोन नम्बर 083590726।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वैक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: स्टीम जीरा मसिनो चामल प्रति बोरा 2125, स्टीम जीरा मसिनो चामल फोर्टिफाइड प्रति बोरा 2125 र कर्णाली को सिमी प्रति केजी 225। सम्पर्क खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय वीरेन्द्र नगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 गोदाम लाइन सुर्खेत।
1: रेडियो भेरी एफएम 98.6 / 102.7 मेगाहर्ज।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 11 बजेको छ।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 / 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: जनता केवल पांच दशक देखी
1: रेडियो भेरी एफएम रेडियो भेरी एफएम
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्से 2.7 मेगाहर्ट्ज़।

0: Sonia.
1: Extreme energy drink.
2: NMB द्वारा बचत खाता प्रदेश को प्रगति संग बचत को नाता
3: रारा को निर्मल पानी जस्ते सोच्छ आफ्नो अमूल्य बचत आजै खोलौ कर्णाली प्रदेश विशेष एनएमबी रारा बचत खाता
4: पाउनुहोस् पहिलो वर्ष निशुल्क मोबाइल बैंकिंग इन्टरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड डिमैट र मेरो शेयर पनि

శ్రీనుభు మహారాజ్ పరీక్షిత్ అభయ శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణ కు అష్టమ స్కందకు సత్ర అధ్యాయ ప్రాంత రాజా పరీక్షిత్ ఆజ్ఞా గరీ భక్షంస భగవాన్ లే సబై ప్రకార కు కామ కు ప్రయోజన ప్రభులే గర్దై గర్దై గర్దై గర్దై సవారీ హోయి భక్షుర అయిలే పరమాత్మ శ్రీ హరి జగత్ కు నారాయణ లే ఆప్నో కార్య పరిపూర్ణ గరీ భక్షే పశే లౌ తమీరు మహారాజ్ పరీక్షిత్ ఎక్ దిన ప్రభు కా గాడి కేవున గో భన్నీ విషయ కు లాగి మా अनि त्यसपछि परमात्माले बडा आनन्दका साथमा एउटा घटनाको चक्र राजा जब मान बलि एकै परिपूर्ण गरे उनान्सेको लागि सयको लागि छोडिएको घोडा आउने बेला भयो भगवान त्यो घोडा आयो भने मेरो खेल लाग्छ र विधिको खेल हारै हुन्छ भनिकन चाँडो जन्मी बक्सुस भनेर सारा देवताले भिन्ती गर्दा भगवान परमात्मा अब प्रादुर्भाव हुन आँटी बक्स्यो राजा बलिको रात दरबारमा ग्रह नक्षत्र योग बार करण बेला समय मुहूर्त अत्यन्त उच्च भएको बेलामा राजा बलिको रक्षाको निमित्त देवताको कल्याणको निमित्त अहिले भगवान कुन बेला प्रादुर्भाव हुन आँटी बक्स्यो भने देखिन् भाद्र महिना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बुधबार भाद्र महिना जब द्वादशी तिथि उच्च ग्रह नक्षत्र योग बार कर्ण बेला समय मुहूर्तले अत्यन्त प्रभावबाट अगाडि बढेको बेला सुन्दर मुहूर्त सुन्दर घड़ी मध्यान्नको समयमा अहिले परमात्मा प्रादुर्भाव हुनुभयो जुन प्रभुको नाम थियो वामन जय बोलो वामन अवतार भगवानको फाल्गुनबाट लिएर भदौसम्ममा प्रभुको जम्माकन सात महिनामा प्रभुको प्रादुर्भाव हुनुभयो फाल्गुन चैत वैशाख जेठ आषाढ साउन भाद्र भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा प्रभु प्रादुर्भाव हुनुभयो अनि लौ त मलाई व्रतबन्ध गरिदिनु पर्यो भन्ने भगवानबाट आज्ञा भयो र साइत सार्नका लागि व्रतबन्धको नीति अप्नाइयो अनि भगवान नर्मदा नाम गरेको नदीको उत्तरपट्टिको ताटको भृगु कच्छप नाम गरेको संगममा जान सवारी हुनुभयो कस्तो रूपले पाल्नुभयो परमात्मा भनेदेखि भाद्र शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि अभिजित रामगरको मुहूर्त मध्यान्नको समयमा अवसराले नाचे गन्धर्वले गाए विद्याधरहरूले प्रतिविन्ती गरे किम पुष्कणहरूले प्रभुको प्रार्थना गरे महाराज परीक्षित त्यसै बेलामा ककले के दियो भगवानलाई भनिदेखेन सूर्यले गायत्री मन्त्र बृहस्पतिले जब यस्ता कारणबाट ब्रह्मशूद्र कश्यपले मेखाला भूमिले मृग चर्म चन्द्रमाले दण्ड माताले कौपिनी वस्त्र आकाशले छाता ब्रह्माजीले कमण्डलु सप्तर्षिले कुशासन सरस्वतीले रुद्राक्षको माला कुबेरले भिक्षा पात्र उमाले भिक्षा यस्तो प्रकारको दिएर बटु वामन स्वरूप भगवान परमात्मा परमेश्वर यस्ता प्रभावबाट तयारी हुनुभयो र प्रभुको तुति विन्ती गरियो र सम्मान गारदले प्रभुको तुति विन्ती गरे त्यसै बेलामा प्रभुको तुति विन्ती ध्यान मनन कीर्तन गरेर अहिले नर्मदा नामको नदीको उत्तरपट्टिको ताटको भृगु कच्छप संगममा राजा बलिको दरबारमा जहाँ सौतानी आमाका छोरा बलिले यज्ञ गरेका थिए त्यही ठाउँमा भगवान वामन सवारी हुनु राजा बलिले भगवानलाई देखेर भन्न लागे यतत बटो वन शशि तत् प्रत्येक समय तोमार्थिनम विप्रसुतानु तर्के गाम काञ्चनम गुण बद्धाम च मृषम तथा नमयमूत विप्रकन्यम तपाईँलाई गाउँ चाहिन्छ कि सहर बजार टाउन प्लान हिराहर मोती चाहिन्छ कि सुन चाँदी चाहिन्छ कि के चाहिन्छ ग्रामीण समृद्धान तुरकान गजन बा रथाम तथा हर तमसम प्रतीक्ष अब जे जे चाहिन्छ हिराहार मोती सुन चाँदी जे जे चाहिन्छ म त्यही दिन्छु मबाट नपाइएला भन्ने कुरा हुन सक्दैन ल माग्नुहोस् यस्ता राजा बलिको वचन सुनेर भगवान भन्नुहुन्छ लौ त मेरो महाराज मलाई केही चाहिँदैन तपाईँले दान दिन आँट्नुभयो त्यसको लागि बधाई छ तर मलाई केही चाहिँदैन भनेकन भगवान अमृत बाणीमा ढपक्क ढाकेर राजा बलिको सर्वसे खाने भाषा अब बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मानको कथा यस अध्यायबाट जय बोलो श्रीमद् भागवत महा